0: तेरा अंत ना जाए लख्या रहा। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला पर पूर रहा। तू सच्चा साहिब सिरत सवालियो, जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत।

0: वाहिगुरु
1: जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजुनी सैमं गुर प्रसाद। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी। मैं तुद अग अरदास मैं होर थाऊ नाही। जिस पह करो बिनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। हम आया दूरों चल के मैं तकी तौ सिरनाए जियो। मैं आसा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। तुद आगै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई कोई नाउ न जान मेरा। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु। नानक दे कर हाथ

डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा च गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सत संगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता पवित्र बाणी दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे अमृतमई बचना दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा

समा गए पूर्ण पुरख विच, करता पुरख दे विच, अकाल पुरख दे विच, उह समा गए आत्मक जोते, क्योंकि मिट्टी ने मिट्टी विच समाउणा है, पाणी ने पाणी विच समाउणा है, हवा ने हवा विच मिक्स हो जाणा है, ते जिहड़ी आत्मक जोत है उहने परम जोत विच जाके मिक्स होणा है। मिट्टी ते पाणी दा समेल नहीं है, पाणी वखरा है ते मिट्टी वखरी है। असी कहीए पाणी ते मिट्टी कट्ठे हो जाण, नहीं हो सकदे। चिक्कड़ तां हो सकदा है, जदों पाणी ते मिट्टी कट्ठे हो जाण चिक्कड़ ते हो सकदा है, पर दोवें कट्ठे एक मिक्स नहीं हो सकदे। थोड़ी देर बाद देखोगे तुसीं मिट्टी थल्ले बैठ गई ते पाणी उपर आ गया। जे आपां मिट्टी च पाणी पा दईए जां रेत विच पाणी पा दईए, उह पहलां तां मिल जाणगे, थोड़ी देर बाद देखो रेत भी थल्ले, मिट्टी भी थल्ले, पानी उपर हो गया। इसलिए महाराज जी कहिंदे आ, इह जिहड़ा पंज तत्तां दा शरीर बनिया, मिट्टी ने मिट्टी हो जाणा, पानी ने पानी, हवा ने हवा, पर जिहड़ी आत्मक जोत है इन्हें परम जोत विच जाके समाउणा है, उह जिहड़ा पूर्ण पुरख है, जिहनूं साईं कहा गया सलोक विच, जिहनूं राम कहा गया सलोक दे विच। ते महाराज कहिंदे ए पूर्ण पुरख विच किवें समा गए, आप आपह जानी है, जिन्हां ने अपने आपे नूं जान लिया है, मैं कौन हाँ, कित्थों आया हाँ, अगे मैं किथे जाना है, जिन्हें अपने आपे नूं जान लिया, ते जिन्हों अपने आपे दी समझ नहीं आई उन्हों की पता मैं कित्थों आया ते मैं किथे जाना है। सानू समझ किन्नी आई है, सानू ये समझ आई है कि मैं मनुख हाँ, मेरा आ मापिया ने नाम रखिया होया है, ते आ मेरा घर है, ते घर विच बाहर जड़ा ने नाम दी प्लेट लगी है वह मेरे नाम दी है, ये फैक्ट्री मेरे नाम दी है, ये थां मेरे नाम दी है, पर असल विच अपने आपे नूं तो समझिया ही नहीं कि मेरे आत्मक तल ते तां कोई नाम ही नहीं है। शरीर दा नाम है ना, आत्मक जोत दा ते कोई नाम ही नहीं है। शरीर दी जात है पर आत्मा दी कोई जात नहीं है। शरीर दियां ते जातां बनातियां आपां, शरीर दे नाम ते बड़ा कुछ लगा होया है पर आत्मक तल ते कख भी नहीं है। बाहरों असी सरदन हाँ, अंदरों असी निर्दन हाँ। अपने आपे नूं असी समझना है कि मैं कौन हाँ, जदों समझ आएगी फिर बेनती होएगी। कह कबीर सुनो रे संतो, खित ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न पव जल फेरा। जिन्हों अपने आपे दी समझ आ गई, जिन्हों अपने आपे दी समझ आ गई, वो अरदास करदा है, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। अपने आपे दी समझ आ गई। अपने आपे दी समझ कदों आएगी, जदों असी होमे नूं छड़ांगे, हंकार नूं। हं होमे विच अहंकार दे विच ना अपने आपे दी समझ आउंदी है, ना दूजे दी समझ आउंदी है, ना आप अपने आप नूं समझना चाहुंदा है, ना दूजे नूं समझना चाहुंदा है। ये हंकार इस तरह दा है। जदों असी होमे नूं छड़ देंगे फिर पता लगना है कि मेरे अंदर भी उहदी जोत है, और सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानण, सब मैं चानण होए। पर कदों, जदों होमे नूं परे कीता, मैं नूं परे कीता, आप अपनी भी समझ आ गई ते दूजे दी भी आ गई। पर होमे विच बंदा अपने आप नूं भी नहीं समझना चाहुंदा ते ना दूजे नूं समझना चाहुंदा, फिर गल किदां बनेगी। इसलिए महाराज जी कहिंदे, जिन्हें अपने आपे नूं जान लिया है, समाए पूर्ण पुरख करते, ओ उस करता पुरख, पूर्ण पुरख जिहड़ा आद पूर्ण, मध पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है, उस करते विच ओ समा गए आत्मक तल ते, जिन्हें अपने आपे नूं पछाण लिया।

नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सार नांगी का रुकरे तेरा कार्य सब सवार नाम सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे कह नानक मन मेरे सदार हो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किस है देह सुपावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जने सा सब पूजाइया सदा कुर्बान कीता गुर बेटो जिस दियाँ वडियाइया कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंसौ तित कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दवस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझन को से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद

तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आंदे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई देख वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने तर

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाह।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती सिमर कै

सिखानु सिखी दान केश दान व्रत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सरजियां दे दर्शन स्नान चौंकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नी वाम मत चे मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरु व्यवहारे गुरु धामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ।

जी विखै शब्द कीर्तन से पौड़िया नंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखलवादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावा दर प्रवान करनिया यात्रावा सफल करनिया दरो करों गुरसिखी जीवन नाम बाणी दियां दाता बख्शनिया चढ़दियां कलावां तंदुरुस्तियां बख्शनिया कल

तरस करना आउन वाला समा आप जिया दी जाद आप जिया दे प्रेम दे बेच बतीत करवावना आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहे गुरु जपे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमय बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्म अनुसार जीवन ज्यौन दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा पला दोहरा गया पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ जो प्रभ को मिल वोच है राज करेगा खालसा

अंता कल्पाय ब्रह्मा बवतरा कल्पाय शिवजो अवतरा कल्पाय करबिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्टि कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने जब युद्ध करख करा कर तारा प्रजा दर्त तब देहे अपारा जब आ करख कर तुहूँ कब हूँ तुम मैं मिल तुदहे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत बेद भेद अर अलम ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीन अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत पिदा जाको बेब न पावत बिदा ताको कर पाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चिन्हत न भिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आजुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबारे सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण गाता ये अस्तु तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ ताके ताप तन कमाए हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवाय सकेरा कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा कल फांसती ताहें उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दरिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी
शरण।

सर्वठोरम हो साई दुष्ट दोखते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुवेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छड के गए हो तोहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छड के गए हो तोहारो द्वार बही गए की लाज अस गोविंदास तोहार राम कली महला तीजा अनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां बाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर दां तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एहे वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित खर सभागे खर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागी कहे नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे
सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय स्रसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा भर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर रे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदामणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और थारो थम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तो जीवां तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर

तिर देखन की आस बले हरि गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़िया जार एते चानण हो दिया गुर बिन कोर अंधार

तोय रहाओ। विश्वे चसिया कड़िया पैरां थित्ती वारी माहुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वे सरागत नाश्री महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारक मंडल जनक मोती धूप मल आण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत पहेरी रहाओ सहसताव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूरत नन एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गांधे विचलत मोई सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सभावे सुवारती होए हर चरण कवल मकरांद लोभित मनोवन दिन मोए आही प्यासा कृपा जल दे नान सारे कोय जाते त्रिनाय वासा राह गौड़ी पूर्वी मल चौथा काम करो नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मना लिव मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पन वडाए कर डंडौत पुन वडाए राव साक तर साधन जानिया तने अंतर हम मैं कंडाए ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावै जम काल सहै सिर डंडाए हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडाए विनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोख खंड बह

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सवैये महल्ले पंजवे के एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सिमरं सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस सिमरत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कवल रिद तारं, गुर अर्जुन गुण सहज विचारं, गुर रामदास कर कियो प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो, भगत जोग को जैतवार, हर जनक उपायो, शब्द गुरु पर कास्यो, हर

0: भगत उतर आयो, बड़ पागी उन मान्यो, रिद शब्द बसायो, मन मानक संतोखियो, गुर नाम दृढ़ायो, अगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दर्शायो, गुर अर्जुन कर गुर रामदास अनपो ठहरायो। जनक राज बरताया सत जुग आलीना, गुर शब्दे मन मान्या अपतीज पतीना, गुर नानक सच नीव साज सत गुर संग लीना, गुर अर्जुन कर गुर रामदास अपरंपर बीना। खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो, बिमल बुद्ध सतगुर समानो आजो नी संभव्यो, सो जस कल कवियन बखान्यो, गुर नानक अंगद वर्यो, गुर अंगद अमर निदान, गुर रामदास अर्जुन वर्यो, पारस परस परमान।
1: साध जीवन अर्जुन अमोल आजो नी संभव, पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो, अगह गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुख दातो, आसंभो उद्वयो पुरख पूरन बिदातो, नानक आद अंगद अमर सत

कार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुर पूरा पायो बड भागी लिव लागी में दन पर सहता पै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तोहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जुन हर भगता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख बिसारन शब्द सार हर साम्य उदार अहमेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध नानक खुटे गुर रामदास तन सर्ब में सह

0: फिर संकट जौन गर्भ ना आयो। काल समुंदर पे रूप प्रगट हर नाम उदाहरण, बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानियो भयो ते संसर सोई। धरन गगन अवखंड में ज्योत स्वरूपी रहो पर, भन मथुरा कश भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर।
1: अजय गंग जल अटल सिख संगत।

सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा करम सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी